हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन, शादी सालगिरह या प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनवालो, आज बुधवार का दिन है, 10 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह, शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का ऐप नंबर 030-262-66-11। वेबसाइट होता है radio-sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। दुनिया की कोने कोने तक इंटरनेट रेडियो के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। हॉलैंड के बीच में, मिड नीदरलैंड में और दूर दूर शहरों तक, और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में और दूर दूर शहरों तक ये प्रोग्राम अपना मोटर कार में, अपना घरों में आप सुन सकते हैं। रेडियो DAB रेडियो की जरिए मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन के आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लोसियू का नाम हरी हरन के आवास में ये सुंदर और सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। बुधवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, आप सभी को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। अनहेल खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग आप सभी को भी पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। तो चले प्रोग्राम में अगली बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। शीला जी की आवाज में आप सुनते ही रहना सुंदर भजन आज बुधवार की खास सुबह की प्रोग्राम में प्रोग्राम

0: कश्मीर।
1: रेडियो SBS के जरिए सुंदर और अति सुंदर भजन शीला जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बसबीस की गई है। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बसबीस किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-226-6611 और उसी टारगेट नंबर पर हमेशा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बसपेश किया जा रहा है।

सुंदर भजन पेश की गए भगत के बस में है भगवान। सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। देश विदेश में भी काफी सुनने वालों बस हमारा ये प्रोग्राम जो है भजन यात्रा प्रोग्राम को सुनते हैं। हर सुबह ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का खास प्रोग्राम जो है सुबह की वक्त आरंभ किया जा रहा है भजन यात्रा प्रोग्राम से। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक और हर शनिवार और रविवार सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये प्रोग्राम आप सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है।

आज बुधवार की खास प्रोग्राम में सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई तोरशा सरकार की आवाज में अभी आपने सुना। सर ही 7:00 प्रोग्राम में 7 मिनट व्यतीत हो चुका है। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए। चलिए प्रोग्राम में सागर की आवाज में ये सुंदर भजन को सुनते

रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना सागर की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। हमारी बहुत सी सुनने वालों बस अपना अपना रिएक्शंस देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। भजन जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, देश विदेश से भी काफी कॉम्प्लीमेंट्स अंदर आते हैं। ऐसे कि सूरीनाम देश से भी सुनने वालों ऐप द्वारा भी अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्स दिया है। सभी सुनने वालों जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं, सभी को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है और आप सभी के लिए एक बड़ी ही खूबसूरत सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है। जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं, सभी को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है और आप सभी के लिए एक बड़ी ही खूबसूरत सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है। चलिए आज की सुबह की प्रोग्राम में प्रोग्राम भजन

कृष्ण भजन आज के ये प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, 9 मिनट बाकी है सुबह 8 बजे में। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन। सभी बच्चों जो तैयारियां कर रहे हैं स्कूल की ओर, पाठशाला की ओर जाने के लिए, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, सभी जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है उनके लिए भी, और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

आज बजकर प्रोग्राम में 6 मिनट व्यतीत हो चुका है। 6 मिनटों ओवर 8 स्टूडियो टाइम। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। मुस्ताक 3 जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बुधवार 10 जून का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव शहर उत्तराखंड से। हॉलैंड देश का सबसे खूबसूरत शहर से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। लाइव फनाउट हार्ट फन नीदरलैंड फनाउट मेड इन नीदरलैंड रेडियो SBS का ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और आज का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी। तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।

ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म का नाम, कमल खान, कुमार सानू, अलका, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज में। और गाना का बोल है ओ प्रिया ओ प्रिया, कहीं प्यार ना हो जाए।

जुबिन एन नीति मोहन की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए 2-32-62-66-11 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। कहो ना प्यार है उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में।

फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और चले अब की बार कुमार सानू एनाल का जी की ओर, किसी से तुम प्यार करो कहीं

अंदाज फिल्म का नाम कुमार सानू एन अलका की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl से वेबसाइट के जरिए भी अपना मोबाइल फोन के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चलिए एक बार फिर से कुमार सानू और अलका की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अभी बार पेश होगा एक बड़ी ही खूबसूरत प्यार भरी गाना है।

कुमार सानुआर अलका की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर जो 4 होता है उस पर आप कार कीजिए और सभी इन्फॉर्मेशन लीजिए 0325656560 पर या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए। उदित नारायण और अनुराधा पोटवल फिल्म का नाम कुछ दिल ने कहा, कुछ दिल ने कहा फिल्म का नाम।

कुछ दिल ने कहा फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है और आप सभी सुनने वालों की सेवा में उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल की आवाज में ये गाना पेश की गए है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है। एक बार फिर से उदित नारायण।

उदित नारायण और अलका जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए। आप सभी सुनने वालों की सेवा में खूबसूरत नखमे प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले शान और संजीवानी की आवाज में ये

प्रोग्राम में 2 मिनट व्यतीत हो चुका है। सुन वालू रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुन वालू की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज जब भी बुधवार का दिन है, 10 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मुस्ताफ 3 यूनी का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। कल जबकि बीफ है, बृहस्पतिवार है, तो कल वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉल यानी कि वेका फुटबॉल

ही धूप का मौसम है, लेकिन फिर भी जिस तरह से मौसमी समाचार से अभी आपने सुना कि कोड खेल दिया गया है, दोपहर की वक्त शाम की वक्त में कहीं कहीं जोर तोड़ से बारिश होने वाले हैं, तो फिर भी आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और यहां से हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो रोजाना बहुत से सुनने वालों सुनते हैं, और ये प्रोग्राम रोजाना भी आपके लिए पेश किया जा रहा है सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय पेश किया जा रहा है। तो हम आपको ले चलते हैं पहला गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

पर मशहूरी मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई फिल्म का नाम मधुमति। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-22-66-6611 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 030-25-65-60। चले फिल्म मैं चुप रहूंगी उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में।

0: नाम था मैं चुप रहूंगी। चलिए आज के ये प्रोग्राम में अब की बार मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम है मजबूर।
1: मैं

मजबूर फिल्म का नाम मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा ये प्रोग्राम भी सुन सकते हैं। चले सौ लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। बड़ी अरमान से रखा है।

गाना बस प्रोग्राम भी है पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। अनोखी अदा फिल्म का नाम होगा आपकी बार। मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज की इस प्रोग्राम में रेडियो SBS का खास प्रोग्राम में किशोर और लता जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की ओर हम आपको ले चलते हैं और आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

मंजूरी मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है। चले मोहम्मद रफी और आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी और अक्षय जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे और वो भी खास तौर पर शमशाद बेगम और तलत महमूद जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और अब की बार फिल्म बाबुल का गीत पेश किया जा रहा है।

तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में अब की बार ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस के जरिए।

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मन्ना डे और लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो एसबीएस के जरिए गाना बस पेश की गई मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले अब की बार मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

पूरा उड़े द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए फिल्म मिलन की ओर हम आपको ले चलते हैं, खासतौर पर मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम भी है। ये गाना पेश की गए एडो फिल्म मिलन, मिलन फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए है। चले गाना किशोर कुमार, किशोर कुमार की आवाज में पेश किया जा रहा है फिल्म मजबूर। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, द बिग बी अमिताभ बच्चन का फिल्म मजबूर, सॉन्ग बाय किशोर कुमार।

गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL और उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम सुनाई देता है और जिस तरह से भी आप सुनना चाहेंगे आप हमारा ये रेडियो SBS का प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी फरमाइश हुआ है इस तिहारे जरूरी खबरें रिक्लाम के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए। आपको खबर किया जा रहा है रेडियो SBS का कंतूर का टेलीफोन नंबर जो है 24 घंटा लगातार आप सभी के लिए होता है। और आपको भी खबर किया जा रहा है जरूर आप तार कीजिए हर एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इन्फो लेने के लिए। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में अबकी बार पेश किया जा रहा है। एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली है। गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और वो भी लता मंगेशकर की आवाज में, लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

ऑस्कर की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आज की प्रोग्राम में जो अभी आपने सुना। हमारे सभी सुनने वालों को वेलकम कहा जा रहा है। जिन लोग प्रोग्राम को इस वक्त सुनते हैं और रोजाना की तरह आज भी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, किशोर कुमार एंड आशा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार फिल्म जवानी दीवानी, उसी खास फिल्म का गाना की ओर किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज के प्रोग्राम में किशोर और आशा जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है। अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम यादों की बारात, सॉन्ग बाय किशोर एंड आशा।

खूबसूरत प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई किशोर दाशा जी की आवाज में ओ मेरी सोनी, फिल्म यादों की बारात दूसरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई है। तो उसी सुनने वालों बस स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं, अपना अपना रिएक्शंस कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। टेलीफोन नंबर है स्टूडियो का 03222 66611।

तुम्हारी कसम फिल्म का नाम आशा भोसले और मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना आज की प्रोग्राम में किशोर एंड आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम है जुदाई। उसी फिल्म का ये गाना अब की बार आप सुनते ही रहना। 1980 का फिल्म है, फिल्म जुदाई, गाना जो अब की बार आप सुनेंगे मार गए मुझे तेरी जुदाई, सॉन्ग बाय किशोर कुमार एंड आशा भोसले। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए मार गए मुझे तेरी जुड़ाई। खूबसूरत प्यार भरी गाने रेडियो SBS के जरिए बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले सुमन कल्याणपुर एंड मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी

0: सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। एक बार फिर से मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।
1: जब से आंखें हो गई तुमसे चार।

रेडियो SBS के जरिए मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03265 65 60 इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर किशोर एन लता जी की आवाज में।

सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आपकी बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, एक गाना होगा एडो फिल्म अपने अपने, सुरेश वत्कर और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

और लता मंगेशकर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो बीते गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए गाना और प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है एक और खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आपकी सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है।

सुरेश वत्कर की आवाज में ये गाना बस पेश की गए, नाम गूंज जाएगा फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में सोनू निगम एंड श्रेया जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

श्रेया जी की आवाज में, सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। चलिए फिल्म नकाब की ओर, जावेद अली की आवाज में अभी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए शरिया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में।

उस पे यस की जरिए गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई श्रेया घोषाल की आवाज में नजर फिल्म का नाम। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। चले प्रोग्राम में सोनू निगम महालक्ष्मी आयर और साथियों के आवाज में द फिल्म नील एंड निकी। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

SBS की जरिए द फिल्म गुरु गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03226 66 11।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हाजिल फिल्म का नाम उसी फिल्म से ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना अभिजीत की आवाज में। चले प्रोग्राम में अलका जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

गाना पेश किया गया। ये फिल्म का नाम हाँ मैंने भी प्यार किया, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में अलका जी की आवाज में। सुनने वालों चले प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रभा की आवाज में। तो फिल्म परवाना, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले आपके बाहर फिल्म खेल की ओर हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

रेडियो SBS की जरिए कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। एक बार फिर से कुमार सानू जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। उदित नारायण।

सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार अतीफ असलम की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

अतीफ असलम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम कसम से

शेख हयाम तक उसी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू और महालक्ष्मी आयर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। फिल्म का नाम कयामत, एक फिल्म जो 2003 में बस रिलीज की गई है।

एडवांस में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से अलका जी की आवाज में खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है, साथ में होगा

में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए अतीफ असलम और सुमेधा प्रोग्राम में।

खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना लाइव की जरिए प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अलका जेके आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

सोनू निगम और खासतौर श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा, उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले अबकी बार आपकी सेवा में ये गाना पेश किया जा रहा है, अक्रोश फिल्म का नाम।

और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चलिए आज की इस प्रोग्राम में गाना है द फिल्म आंखों में तुम हो, कुमार सानू और अलका जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

सुनने वालों घड़ी की ओर देखा जाए 10 मिनट बाकी है 2 बजने में 3 मिनट और 4 स्टूडियो टाइट हो चुका है। आज के प्रोग्राम में गाना हम पेश करने वाले हैं फिल्म सूर द म्यूजिकल, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है। इसी फिल्म में महालक्ष्मी आयर की आवाज में एक गाना लाया गया है और खास तौर पर गाना आज के ये प्रोग्राम में रोटरडम शहर की रहने वाली राधा, राधा ये गाना आज के दिन बस सुनना चाहते हैं महालक्ष्मी आयर की आवाज में। रोटरडम शहर की रहने वाली राधा की मांगी हुई गाना

ये गाना बस पेश की गई पुरानी फिल्म खानदान, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अबकी बार द मैन विद अ गोल्डन वॉइस तलत महमूद की आवाज में। ये गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है किनारे किनारे।

द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी की आवाज में ये गाना पेश किया गया। ये फिल्म का नाम किनारे किनारे। चलिए अब की बार किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं।

आसरो भी देखिए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर कुमार के बाद महेंद्र कपूर की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में है। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये खास गाना की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी और

0: रेडियो SBS की जरिए पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दोस्ती का गीत पेश की गई। चले तलत महमूद और आशा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।
1: जब दिले नादान का प्रीमियर पे मेरी मुलाकात उनसे हुई, मुलाकात वैसे होती रहती थी आगे पीछे, तो हमने ये शायद जरूर कहा हो कि तलत जी आप इतना अच्छा गाते हैं, क्यों नहीं आप अपना पूरा वक्त इसी टैलेंट में शायद लगाएं तो हमारे लिए अच्छा हुआ, कल हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। और वही हुआ कि आगे चलकर जब मैंने अपनी पहली पिक्चरें 1952-53 में काम किया तो तलत महमूद साहब ने मेरे प्लेबैक दिया था लैला मजनू में, ठोकर में, और एक समझे के दिल की तमन्ना

रेडियो SBS के जरिए मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio.sbs.nl। किशोर एंड लता मंगेशकर

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

चढ़ाते रंग आपने सुना फिल्म यमला पगला दीवाना से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है कोई मिल गया से, ऋतिक रोशन का फिल्म है। गाने के बोल है इट्स मैजिक आई हैव गॉट द वाइब दैट यू नीड।

बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आपने सुना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में फिल्म कलंक से, और अब आप सुनिए फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए चांद छुपा बादल में।

कुछ तो है फिल्म का नाम, और अब आप सुनिए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से, अर्जुन, सुखविंदर सिंह और पैरी की आवाज में, हाउस पार्टी सॉन्ग।

अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, ये चाहे द फिल्म अभिमान हसन हुंदर लता मंगेशकर। हाउ द फेदर मेट एट द फिल्म बॉम्बे, कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले।

मिम्मी से आपने सुना श्रेया घोषाल और एआर रहमान की आवाज में परम सुंदरी, और अब आप सुनिए रहना है तेरे दिल में से, सच कह रहा है।

एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा का टाइटल सॉन्ग आपने सुना दर्शन रावल और रोचक कोहली की आवाज में। और अब आप सुनिए के और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में फिल्म प्यार में कभी कभी से। दिल से मेरे दूर न जाना तुम मेरी खुशी।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में आपने सुना बेहतरीन गाना फिल्म भावना से। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दबा क्या करूं, दिल भी तू है जहाँ भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं। अगला गाना है फिल्म 14 फेरे से। फिल्म 14 फेरे से आप सुनिए गोरी चढ़के।

दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। राम राम, नमस्कार और सलाम वालेकुम सुनने वालों, आप सुन रहे हैं रेडियो SBS और मैं हूं आपका सेविका नीता। और हाँ, हमारा साथ रहेगा 9 बजे तक। आप जरूर प्रोग्राम सुनते रहना और रिएक्शन देते रहना। हमारा स्टूडियो का नंबर है 03-262-66-11। आपका गीत मांगना हो तो आप जरूर इस नंबर पर तार कीजिए। एक बार फिर से 03-262-66-11।

सरे 7 बजने में सुनने वालों में 7 मिनट बाकी है। ये है स्टूडियो टाइट, यहाँ से हम आपको ले चलते हैं अपना पहला नगमा की ओर। फिल्म का नाम है आमने सामने। पुरानी फिल्म आमने सामने से ये गीत निकाला है और आपको सुनाएगी द डायमंड वॉइस, द मैन विद द डायमंड वॉइस, मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: बता है उस जालिम।
1: ओ हाँ, हमसे पूछो, हमको बता है उस जालिम का नाम। द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी। कल्याण जी, आनंद जी के म्यूजिक पर आपने सुना, फिल्म का नाम है आमने सामने।

कभी रात दिन हम दूर थे, द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर के आवास में। म्यूजिक सजाए कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम है आमने सामने।

दीवाने का नाम तो पूछो। द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी फ्रॉम द फेमस मूवी एन इवनिंग इन पेरिस।

लवली लवली है समा, रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले। और साथ दे रहा है महेंद्र कपूर। फिल्म बूंद जो बन गई मोती,

इतना निखरा चेहरा, सीआईडी 909 फिल्म का नाम है, रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले, महेंद्र कपूर और कमल बारोद की आवाज़ में।

0: किशोर डा के वास में सुनने वाला हूँ, आप सुन रहे हैं। फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ।
1: बड़े हैं हम भी राहों में, ये दिल न होता बेचारा,
0: ये दिल न होता बेचारा।

0: सुनने वाला आप सुन रहे हैं रेडियो SBS। मैं हूँ आपका सेविका अनीता और हमारा साथ रहेगा 9 बजे तक। ये स्पेशल सॉन्ग हम पेश करते हैं हमारा मौसी और मौसा जो सुरिनाम देश से यहाँ हॉलैंड देश में
1: मुझसे तू प्यार
0: वेकेशन पर है।
1: एक बादल आवारा
0: श्रीमती यशोदरा और श्रीमान भाईना
1: के मैं खुद
0: वो क्वारंटाइन पोल्डर के रहने वाले हैं।

0: प्यार बढ़ा,
1: इतना न मुझसे तो प्यार बढ़ा, मेरा मौसा गए थे मौसी के लिए।
2: जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा।
1: तलत और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर।

इतना न मुझसे तू प्यार भरा। तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, और ये स्पेशल सॉन्ग हम पेश करते हैं, पेश किया है अपने मौसी यशोधरा और मौसा भाईना के लिए, जो हॉलैंड देश में वेकेशन पर है और रहते क्वारंटाइन पोल्डर निकेरी में।

हाँ सुनो ना, यहाँ से हम प्रोग्राम जारी करते हैं द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है जब याद किसी की आती है।

0: तिंगी लव इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में एक बार फिर फिल्म का नाम है तकदीर। 1967 का फिल्म है सुनने वालों।
1: जब जब बाहर आ

जब जब बाहर आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए। द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म का नाम है तकदीर। मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का नाम है।

पर्वतों की धारा, रॉक रोल क्वीन आशा भोसले और महेंद्र कपूर के वास में

माझी चल, फिल्म आया सावन झूमके, द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी।

थिंग्स फेन के रहने वाले गायत्री ये स्पेशल गीत मांगा है सभी सुनने वालों के लिए और अपने आप के लिए। फिल्म का नाम है जानबाज़।

का साथ है कितना प्यारा, ईशोडा और सपना के वास में। और ये खूबसूरत सा गीत मांगा है वार्निंग स्पेन के रहने वाली गायत्री खुद अपने आप के लिए और सभी सुनने वालों के लिए।

वो साथ हमारा दे न सके, द मैजिकल वॉइस ऑफ हेमंत कुमार। हरिश्चंद्र तारामती फिल्म का नाम है।

संजय जोधा के वास में तेरे बिन। एक स्पेशल सॉन्ग है ये, समवन स्पेशल के लिए। ये गीत हम पेश करते हैं अपनी माँ के लिए। फिल्म का नाम है ABCD 2 और आपको सुनाएगी अरिजीत सिंह।

अरिजीत सिंह के आवाज़ में, और ये स्पेशल सॉन्ग हमने पेश किया है अपने माँ के लिए, श्रीमती आशा शिवनारायण। फिल्म ABCD 2, यहाँ से हम आपको ले चलते हैं, एल्बम का बोल है कैंडल लाइट 7, निजाम के आवाज़ में आप सुनिए।

0: किया दिल ने कहाँ हो तुम, निजाम की आवाज में।
1: प्यार से पुकार लो जहां।
0: एल्बम का बोले कैंडललाइट 7। इस बार आपको सुनाएगी उमर वागिद हुसैन।

देख लो आवाज देकर पास अपने पाओगे। नदीम खान के वास में आपने सुना एल्बम का बोल है 14 सुपर सोल्स वॉल्यूम 2।

तुमसे बिछड़ के चैन हम कहाँ पाएंगे। उमर वागिद हुसैन के वास में एल्बम का बोले 14 सुपर सोल्स। ओम प्रकाश हीरा के वास में

आवाज सुनने वाला आप सुन रहे हैं रेडियो SBS। धीरे धीरे वक्त तो किसी का इंतजार नहीं करते। निकल जाता है

नदीम खान के वास में रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, आपने सुना। यहां से हम आपको ले चलते पहला कहां आखिरी नखमा की ओर, और आपको सुनाएगी संजय जोधा। इसी गीत के साथ हम आ गया इजाजत चाहेंगे आपसे। आशा और उम्मीद करती हूँ सुनने वालों के आपको प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। दिल क्यों धड़कता है,

जो स्टूडियो में तैयार किया, रिएक्शन दिया, शुक्रिया, धन्यवाद। हमारा मुलाकात होगा बुधवार को। सुनने वालों, आप जरूर प्रोग्राम सुनते रहना इस रेडियो स्टेशन के जरिए, रेडियो SBS। मैं हूँ आपका सेविका नीता, और हाँ, मुस्कुराते रहना।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,

0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।